0: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the love and message of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Salok Mahalla Tija ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत्र है एक शब्द लिवलाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर है जो हर हृदय सदा वसाए बिन सतगुर नाम ना पाई है बुझो कर विचार नानक पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मनमुख तृष्णा भुख न जाए गुरमुख शब्द रतिया शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लगे आए नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी हाँ बलिहारी तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किले विख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा श्लोक महला तीजा गुरबिन ज्ञान ना होवई ना सुख वसै मन आए नानक नामे हुणे मन मुखी जसन जन्म गवाए महला तीजा सिद्ध साधक नामै नु सब खोज दे थक रहे लिवलाए बिन सतगुर कने ना पायो गुरमुख मिलाए मिलाए बिन नामै पहनण खान सब बाद है तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिसदात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावै हर गुण शंता हर कीर्तन करहै हर जस सुनै तस्कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम जनता जन नानक नाम ते आया गुरमुख धनवंता श्लोक महला तीजा पढ़ना गुणना संसार

वेद पुराण सबह मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भज्यो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन और ना देखा, नैन रहे रंग लाई या बेगल कहन न जाई, हमरा परम गया पौ पागा जब राम नाम चित लागा रहाओ, बाजी गर डंक बजाई सब खलक तुमा से आई, बाजी गर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला, कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुखिया बुझाई ता कह हृदय रहा समाई, गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह रंग राता मिलियो जग जीवन दाता, जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी, चेरी तू राम ना करस पतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाओ, तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी, चेरी तै सुमत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही, अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ, कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया, क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई, हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोचे बारंबारा रहाओ, अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई, कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे तो क्या कीजे, हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी पवसा गिरतार मुरारी, सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु प्रपंच कर पर तन लियावै, सुधारा बयान लुटावै मन मेरे कूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजे जरा जनावे तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा
हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि योग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। हाउ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ। दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना। अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई। ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। राग सोरठ बाणी, भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब देखा तब गावा, तो जन तीरज पावा। नाद समाए लोरे, सतगुर पेटले देवा रहाओ। जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता। ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी, चमकार बिजल तही। नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर। जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा। गुरप्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया। कर चौथा सोरठ पाड़, पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो। तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो। रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उस माई। हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ। बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान शिवावे हो। लोग कुटंब सबोते तोरे, तो वापन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बरन ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतू था प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो। सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ न जनई लोग गठावै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा होमन गंठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो।

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौं मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाहीं कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास।

हामी ऊपर कृपा कर स्वामी रख संग तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर निर्डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे विख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचर बै संतर तायो मल काटी करते उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हरे और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पाव भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल सब किलविख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगै।

0: प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी, हर हर सफलियो बिरख प्रभु स्वामी, जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाथी भूख पुखानी, जिनके वडे भाग वड उच्चे, तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी, जन नानक दा दसानी, तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली, गुरसख मी चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो, हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ, मत जानो वाज के काली, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली।
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the love and message of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba.
2: Radio Sai now presents some bhajans sung by devotees from Belgium.